आशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु नकुल हि प्रसंसि कालहु डरहि न रण रघुवंशि विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होइ जो तुमहि डराई सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल पर